0: हमने जबरदस्ती बिठाया उनको,
1: वो नहीं, इसे पैसे मिलते हैं।
0: किससे पैसे मिलते हैं?
1: जो देखते हैं सुनते हैं।
0: अच्छा
1: हाँ।
0: चलो यार जायो ना विशाख, लेकिन मेनू म्यूट कर दो कोई गल
1: अभी सही है
0: ना, सुनो मेरी बकवास। अभी तो पहले शुरू करते हुए क्या कहा था कि ये हम कॉमेडी के तौर पे कर रहे हैं, चवले मारेंगे, सीधी सीधी सी बात है, कोई गल इतने ऑथेंटिक नहीं है।
1: बाबा जी इतना सीधा भी नहीं होना।
0: नहीं नहीं खैर कोई गल नहीं,
1: जलाल में नहीं आना।
0: नहीं नहीं नाले मैं कंट्रोल च हां, लेकिन अगर दो बंदे ने और कहना कि मैं बकवास कर रहे थे मते।
1: नहीं नहीं वो नहीं कह रहे।
0: अच्छा कौन कह रहे थे?
1: वो ये मैंने इन बिटवीन द लाइन पढ़ा है।
0: अच्छा इन बिटवीन द लाइन पढ़ा है। चलो फिर गाना सुना दे कोई ना, कोई गल नहीं, हो सकता है फिर सबर आ जाए थोड़ा जा, फिर बावे जी लास्ट मिनट की बकवास सुन लो।
1: ये फिर बाबा जी नु ते तुहानू भी एक गाना सुनाने आ ते लो जी समय ना नाज़रीन अबरारुल हक दा गाना है। ये ना ए नहीं सी ਇਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਚਮਕੀਲੀ ਹੈ।
0: ਵਾਹ ਚਮਕੀਲਾ ਬਾਬਾ ਤੇ ਚਮਕੀਲਾ ਗਾਣਾ, ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ ਪੀਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ
1: ਸਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਆਪਕੀ ਖਿਦਮਤ ਮੇਂ ਇਹ ਗਾਣਾ, ਔਰ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਆਤੇ ਹੈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੇਂ ਬਿਸਮਿਲਾ ਕਰਾਂ, ਜਹਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪਾਸ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਨਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ। ਔਰ ਆਪ ਨੇ ਹੁਣ ਫੂਕ ਮਾਰੀ ਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹ ਲਈ ਗਏ।
0: ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫੂਕ ਫੂਕ ਫੂਕ।
1: ਅੱਛਾ
0: ਨਾਲੋ ਨਾਲ ਚਲਦੀ ਹੈ ਨਾ
1: ਜੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਲਾਲ ਮੇਂ ਨਾ ਆ ਜਾਏ ਕਹੀਂ ਇਹ ਗਾਣਾ ਸੁਣ ਕੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਈਏ ਗਾਣਾ ਸੁਣਤੇ ਹੈ।
2: आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल radio@snipelay.com।

0: लो बाबा जी, फिर चमकीली दा कमाल देखें कि उसने क्या कहती है कि चमकीली जो है वो खुद अपनी बारात लेके आई है।
1: तो
0: बाबा जी, ये जब हम गाना सुन रहे थे तो
1: जी
0: एक कॉल आई है।
1: कॉल आई है।
0: कॉल आई
1: वाह
0: है।
1: जी वाह।
0: अच्छा, कॉल वाले कहते हैं कि यार ये जो वो उसका चमकीली के साथ जो है ना कोई कनेक्शन है,
1: ठीक है।
0: वो कहते हैं कि मैं रणमरीद होने का सर्टिफिकेट लेना चाहता हूँ।
1: वाह, क्या
0: तो
1: बात,
0: वो कह रहे
1: क्या
0: थे कि
1: बात
0: जी
1: है, बड़े
0: बाबा फूका साहब से कहें कि जो थोड़ी सी जो है ना हमें दुआ करें, कोई फूक मारे कि उनका भी ब्याह हो जाए।
1: अच्छा, ब्याह होया ही नहीं तो पहले ही रणमरीद।
0: नहीं, वो बनना चाहते हैं ना, वो शादी करवाना चाहते हैं, लेकिन शायद उनके वालदैन जो है वो उनकी शादी जो अभी नहीं करना चाहते।
1: हाय हाय, क्या ज्यादती कर रहे हैं उसके वालदैन। इतने नेक ख्यालात रखने वाला लड़का, क्या
0: अच्छा, और उनका
1: बात।
0: पता है क्या कहना है उसके, क्या बता रहा था, कहता है कि मेरे वालदैन कहते हैं कि ना तुमने अभी तालीम हासिल की है, ठीक है, ना तुम्हारे पास कोई काम है, ना
1: बिल्कुल,
0: कोई रहने की जगह है,
1: वाह,
0: तो तुम शादी करके उस गरीब बच्ची की जो है वो भी जिंदगी खराब करोगे।
1: नहीं, क्यों खराब कर रहा है जी, ये तो पाकिस्तानियों का दस्तूर है ना, ये तो बिल्कुल ओरिजिनल पाकिस्तानी है ये तो।
0: उसके माँ बाप या वो
1: नहीं,
0: लड़का,
1: लड़का वेला निकम्मा, ना कोई काम ना काज, ना खुद पता है कि रोटी कितू खानी है, ते बीवी ले आके तो सिर ते बिठा दो। ये तो सही ओरिजिनल पाकिस्तानी लोग हैं। सॉरी, सोच उसकी, वालदैन तो फिर समझदार है नजर आ रहा है, लेकिन लड़का तो मैं कहना 2 मिनट है तो सभी घुमाने होने। या अल्लाह, मिला दे यार इन्हू जड़ी कुड़ी दू है। ये जड़े साढ़े लोग कहते ने ना कि लड़के की शादी कर दो तो उसको अकल आ जाएगी, उन्हें वो जिंदगी भर आई नहीं तो इन्हू आ जाएगी शादी तो बाद। तो चलो, मैं
0: अच्छा
1: कहना शादी कराओ दी, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, दुआ करनी है जी, अल्लाह ताला करे या अल्लाह मुंडे का ब्याह करा दे।
0: जो है वो सर्टिफिकेट दे दिलवा दे।
1: वो ऑटो ऑटोमेटिक लाभ जाएगा, वो तो सब भी असी खूह ये तो वो तो ऐसा एक तालाब है जिसे असी सब लंघे हैं, उसमें कोई गल नहीं, वो तो ऑटोमेटिक लाभ जाएगा। उसको कहें कि इस चीज़ का खौफ ना करे, रणमरीद तो इंसान ऑटोमेटिक हो ही जाता है। एक ना एक दिन ऐसा आता है जब बीवी कदमों में बैठना पड़ता है, ये तो सब बाबा जी भी इस चीज़ को लंघे ने, कोई मसला नहीं। हालांकि मेरी दो दो नहीं है, एक ही सॉरी,
0: ए लंगे ना या लंगते पे ना,
1: नहीं मैं लंघ चुके हैं, लंघ चुके हैं
0: यानी उन बाबा
1: यार। गल बाबा मुंडे दी हो रही, तुझे फिर बाबा विच पा दे, 2 मिनट दुआ कर रहे। क्या बात है यार,
0: आप
1: वाह वाह जी, हैं
0: की होया बाबा जी, की अल्लाह।
1: कनेक्शन हो गया, कनेक्शन 2 मिनट विच टोकना नहीं। वाह क्या बात, और तू कॉल इस चीज दी आई है कि
0: जी
1: लोग कह रहे
0: जी
1: हैं, लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग कहते हैं ना कि लड़के की शादी करा दो तो उसको अक्ल आ जाएगी, ये क्यों करते हैं? उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं है वैसे वैसे बंदा अगर गौर से सोचे
0: जी
1: कि जो लड़का माशाल्लाह पहले से ही इनरिस्पॉन्सिबल है, ना अभी तक वो नौकरी कोई सही कर रहा है, ना उसके पास कोई घर है, ना उसके पास कोई जगह है रहने की सही मतलब उस तरह की चीज़ें, तो ये कौन कहता है कि शादी करने के बाद उस इंसान को अक्ल आ जाएगी? ये पता नहीं हमारे इस कल्चर में, स्पेशली हमारे पाकिस्तानी कल्चर में इस चीज़ का कॉन्सेप्ट बहुत है। आप उस लड़की के साथ ज्यादती नहीं कर रहे वैसे, क्या आपने उसको एक ऐसे लड़के के पास भेजे जिसको अभी अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ पता नहीं है, मतलब वो अपनी जगह पे अपनी स्टेबिलिटी पे आया ही नहीं, तो आपने उसकी शादी करा के जो है ना उसको,
0: ना तो बाबा जी, पर जब जिम्मेदारियां सर पे पड़ती हैं तो फिर बंदा सीधा नहीं
1: हर
0: होता।
1: इंसान ही ना होता, हर इंसान नहीं होता,
0: अच्छा, हर
1: हर इंसान नहीं होता, हर इंसान को अल्लाह ने ये तौफीक नहीं दी होती कि उसको समझ लग जाए कि मेरे ऊपर ये एक जिम्मेदारी पड़ गई है, मेरी ये जो घर एक बीवी है, अब मेरी ये किसी की बेटी है, अब इसकी जिम्मेदारी मेरी, ये जो है ना अल्लाह तौफीक हर इंसान को नहीं देता कि उसको ये अक्ल हो। तो मैं कहूँगा ये कॉन्सेप्ट गलत, तो जड़ा ना
0: कॉन्सेप्ट ही
1: सी
0: गलत है
1: कॉन्सेप्ट ही गलत है
0: ना। तो
1: लड़के,
0: जो हमारे बुजुर्गों ने हमारी जो करवाई थी या हमने जिनकी करवाई है तो उनका क्या
1: वो
0: हो रहा है?
1: जमाना और था, मैं इस जमाने की बात कर रहा हूँ, उस जमाने और इस जमाने में बहुत फर्क है जनाब। पीरो मुर्शिद तुहानू पता है उस टाइम 1.5 रुपए की या कुछ दी फैंटा दी बोतल लभदी सी,
0: दाढ़ी किन्ने दी लभदी है?
1: मैं फैंटा दी बोतल नहीं पता, खमीरी रोटी पर रखा था 50 रुपए की है भी इस तरह कुछ, ते मतलब खमीरी रोटी 50 रुपए की है। जमाना बदल गया, जमाना बदल गया,
0: जमाना खराब है, दगा नहीं। अच्छा नहीं,
1: नहीं ज्याती ना
0: जी
1: करो ना मेरे
0: जी
1: कन्ना नाल, ज्याती ना करो
0: जी जी जी अच्छा बाबा फूका साहब, अभी भी हमें जो है ना वो फेसबुक पे लोग देख रहे हैं, जिसका मतलब है कि वो थोड़े टिके हुए हैं।
1: ठीक है, टिके रहे, कोई मसला नहीं,
0: यानी कि
1: माड़ी चीज नहीं देख रहे।
0: मुझे तो शक है घर वाले ना
1: हो, घर वाले हो, कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं, घर वाले डेली भी फूका पैंदियां ने, तू भी फूका पै जानी, कोई मसला नहीं,
0: कोई मसला,
1: कोई मसला नहीं ना जी। ये रन मरीदी का जो कॉन्सेप्ट
0: है नजरी, अभी ये जो हमें जो कॉल आई थी कि वो रन मरीदी का जो है सर्टिफिकेट लेना चाहते हैं, आपका इस बारे में क्या ख्याल है? आप भी हमें फ़ोन कर सकते हैं, टेलीफोन नंबर है 3321-2984। आप अपनी राय दे सकते हैं कि ये जो लड़का नखट्टू होता है, ना पढ़े है ना लिखे है, और उसके माँ बाप, अच्छा बाबा फूका साहब आपको एक मज़े की बात बताऊँ, उस लड़के को जो नखट्टू होता है ना, ना पढ़ा लिखा होता है, ना काम होता है, ना उसके पास घर होता है, अच्छा उसके लिए लड़की देखते हैं कौन सी सोनी, ठीक है, पढ़ी लिखी और जो काम भी करती हो। अल्लाह
1: वाह, तौबा तौबा अस्तगफुरुल्लाह, तौबा तौबा या अल्लाह माफ,
0: है ना कमाल,
1: कमाल है ना। यही तो गल है ना, दो ऑपोजिट चीज़ा तुम मिला रहे हो आपस में, मतलब अल्लाह ने तुम्हें इतनी अकल दी है, ताई तो बाबा बनया मैं लोगों को अकल दिलाने कि लोग समझ जान दुनिया का दस्तूर की है, सिस्टम की है, क्यों ज्यादतियाँ कर दे अपने बच्चों नाल, अपनियाँ धियां नाल, नखट्टू नू मारो लत, दसो कि नखट्टू है, जिम्मेदार पहले उन्हें बढ़ाओ, फिर उन्हें इतनी बड़ी जिम्मेदारी दवो कि वो किसी और बंदे की जान की हिफाजत कर सके।
0: अच्छा ये जो खास तौर पे नखट्टू बच्चे होते हैं ना
1: जी,
0: लड़के खास तौर पे
1: जी,
0: अच्छा माओं के बड़े प्यारे होते हैं,
1: मावें तो खराब कर दी ने, मावां तो पा लम्बा लेना चाहिए, मैं कहना उन्होंने भी थ्रू हो सब तो ज्यादा तस्वीर मैं इन्होंने मावं तो फेरांगा जड़िया जड़े ना अपने बच्चों को प्रोटेक्ट कर दी ने।
0: नहीं कि लम्या किसको डालना था, लड़के को या
1: ना जी मां नु, एते तस्बीह फेरी तको राती बैठ दो, आज राती पांच मावां टवण गियां, पांच तस्बीहां फेरियां ने, कोई टेंशन नहीं,
0: अल्लाह खैर करे,
1: ऑटोमेटिकली क्योंकि तस्बीह दा तल्लक उस नाल ना, वो आपो पहुंच जांदी उस मां कोल जिहड़ी अपने बच्चे नु फजूल च प्रोटेक्ट करदी, जिस टाइम मुंडे नु लत पैण वाली हुंदी है ना ते आ जांदी अगे शील्ड बन के कैप्टन अमेरिका, यह जी मावं ज्यादा कर दें उस बच्चे प्रोग्रेस कर नहीं दें, अपना मेरा ला ला मेरा बच्चा मेरा न्यूनी न्यूनी करके घोर रखे आता
0: है,
1: दोबारा रिपीट ना ना कराओ चाचू जी, पीर साहब की कर रहे हो यार, की कर रहे हो, एक बार हो गया मेरा प्यारा मेरा लाल मेरा न्यूनी मेरा बच्चा, नहीं नहीं नहीं ऐसा कभी नहीं होगा, क्यों कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता, उन्होंने इस तरह कार करके ना बढ़ा लेंदी है,
0: मेरा पुत्र तो इस तरह का है ही, बड़ा अच्छा है, बड़ा,
1: हाँ जी कबीर की वो आँच नहीं आने देती, कोई इंसान इल्ज़ाम तो उस पर लगाए ना पहले, पहले उस पर इल्ज़ाम लगाए, सबके सामने उसको प्रोटेक्ट करेंगी, उसको ये वो कॉन्सिक्वेंस उस पर आने नहीं देंगी कि भाई उनको पता चले कि उन्होंने क्या गलत किया क्या सही नहीं, हाँ कल्या बैग उन्होंने भावें चार जुतियाँ ला लो बेहतर, लेकिन लोगों के सामने होते आँच नहीं आने देनी, जबकि दुनिया ही आपकी सबसे ज़्यादा आपको सिखाती है, जिस टाइम लाइव आपको लोग कहेंगे कि ये आपने गलत किया या आपने ज़्यादती किया ये कुछ, तो उससे इंसान सीखता है, लेकिन साड़ियाँ मावं आ जाए फीडर लैग, ये लो जी बेटा पियो नीडो,
0: लेकिन लेकिन क्या बच्चे के कॉन्फिडेंस के लिए भी नहीं अच्छा होता कि उसके उसको भी पता होता है कि मेरे पीछे मेरी माँ या मेरा बाप खड़े हैं जो मेरी सपोर्ट कर रहे हैं,
1: सपोर्ट करो उधर करो जिधर बननी चाहिए, लेकिन जिधर आपका बच्चा गलत है उधर उसको कहो कि वो बच्चा गलत, कोई मसला नहीं है, ये भी एक चीज़ मतलब उसके कॉन्फिडेंस में है, उसको पता होना चाहिए ना कि ये चीज़ मैंने गलत की है, दोबारा आइंदा मुझे ये गलती नहीं करनी चाहिए।
0: तो आपका कहना है कि आज चार पांच माए तो जो है वो
1: मैं कन्फर्म टवण गया थानू तो क्यों अगले प्रोग्राम से सानू फोन आएगा कि मैं टठी हाँ मैं टठी हाँ तो मैं भी टठी हाँ तो एक तो नील भी पेगा ये कन्फर्म है मैं उत्तू दस रही तस्वीर का दाना दस रहा मैं एक नील पवेगा तो मैं ये भी दस सकना कितने पवेगा लेकिन चलो आपस में रखने कोई गल नहीं
0: यानी कि इतना सख्त अजाब है ये
1: यार क्यों नहीं है क्यों नहीं है क्यों प्रोटेक्ट करते हो
0: तो फिर क्या करे वो माँ उसका
1: मारे उसको लात खुद के जी तूने गलत किया ही है इंसान बन तब वो जिम्मेदार बनेगा ना नहीं तो वो जिम्मेदार कैसे बनेगा जब हर बार वो कोई गलती करता है उसके आगे शील्ड बन के आके उसको प्रोटेक्ट करोगे तो मेरा बस चले तो मैं उस तू वड्डी तस्बीह लेके तो शील्ड ही पान दवा।
0: अच्छा वैसे पता है क्या मेरा जो मानना है ना कि जब हमारे लड़के खास तौर पे क्योंकि लड़के अब तो पता नहीं शायद ट्रेंड चेंज हो गया और लेकिन जब हम छोटे थे ना बाबा फूका साहब तो लड़कियां जब घर आती थी ना स्कूल से उन्होंने आके बर्तन भी धोने हैं उन्होंने कपड़े भी इस्त्री करने हैं उन्होंने हर काम घर का करना लड़का जो है वो जनाब चौधरी साहब का पुत्र है आ रहा है
1: ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ।
0: ਰੋਟੀ ਗਰਮ ਗਰਮ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਹਾਏ। ਵੈਸੇ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਜਬ ਮਾਂ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ, ਮਾਂ ਹੀ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਸੇ ਬੱਚਾ ਅੰਦਰ ਆਇਆ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਟੇਬਲ ਪੇ,
1: ਯਾ
0: ਤੋ ਜਬ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ ਨਾ,
1: ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨਾ ਲਵਾ ਦੇ,
0: ਹਾਏ ਹਾਏ ਹਾਏ। ਉਸਕੇ ਬਾਅਦ ਤੋ ਵੋ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪੁੱਛਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਹੈ,
1: ਨਹੀਂ ਵਾਕਈ ਮਾਂ ਮਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
0: ਅੱਛਾ ਖੈਰ, ਵੋ ਤੋ ਲੜਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਮੇਰਾ ਇਹ ਮਾਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੜਕਾ ਜਬ 15-16-17 ਸਾਲ ਕਾ ਹੋ ਨਾ, ਉਸਕੋ ਕਾਮ ਪੇ ਲਗਾਏ,
1: ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਏ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਗਾਏ
0: ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ।
1: ਉਹ ਤੱਕੋ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਇਤਨਾ ਡਾਡਾ ਪਰਨੇ ਫਸ ਗਈ ਮੈਂ,
0: ਅੱਲਾਹ
1: ਉਹ ਜਲਾਲ ਆ ਰਿਹਾ, ਬਸ ਤੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਰੱਖਿਓ,
0: ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਪਾਰਟ ਟਾਈਮ ਜੋਬ ਦਿਲਵਾਏ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਦਿਲਵਾਏ,
0: ਥੋੜਾ ਸਾ ਕੰਮ ਕਰੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ
0: ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ। ਇਹ ਜੋ ਅੱਜ ਹਮਾਰੇ ਬੱਚੇ ਆਈਫੋਨ ਮੰਗਤੇ ਹੈ ਨਾ, ਪਲੇ ਸਟੇਸ਼ਨ 5 ਮੰਗਤੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੇਮ ਮੰਗਤੇ ਹੈ,
1: ਉਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਖੁਦ ਖੇਡਦਾ ਹੈ
0: ਤੇ ਗੱਡੀ ਕਿਸੇ ਸੰਭਾਲਦੇ ਨਾ ਬਾਬਾ,
1: ਉਹ ਗੱਡੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੇਮ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ।
0: ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਵੋ ਜਨਾਬ ਬੱਚੇ ਕੋ ਇੱਕ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਕਿ ਇਹ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਜੋ ਮੁਝੇ ਫੋਨ 12 ਹਜ਼ਾਰ ਕਾ ਦੇ ਕੇ ਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸਕੇ ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀ ਹੈ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਔਰ ਕਿਸ ਮਿਹਨਤ ਸੇ ਵੋ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਕੇ ਮੁਝੇ ਜੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਲਵਾਈ ਹੈ।
1: ਆਈ ਅਗਰੀ ਔਨ ਦੈਟ,
0: ਹੈ ਨਾ। ਤੋ ਜੋ ਮਾਏ ਗਿਰੇਗੀ ਨਾ ਅੱਜ ਬੈੱਡ ਸੇ,
1: ਬਿਲਕੁਲ,
0: ਵੋ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਜੋ ਉਨਕੇ ਬੱਚੇ ਹੈ ਨਾ,
1: ਉਹ ਮੇਰੀ ਤਸਵੀਰ ਟੈਗੀ ਤੋ ਕਾ ਇਤਨਾ, ਓਏ ਹੋਏ ਹੋਏ ਹੋਏ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਮਾਰ ਟੈਗੀ ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਟੈਗੀ,
0: ਅੱਲਾਹ
1: ਉਹ ਦਵਾਈ ਲੈ ਕੇ ਨਾ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਸੁੱਤੀ ਸੀ, ਟੈਗੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਗਈ ਮੈਨੂੰ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਸਵੀਰ ਟੈਗੀ।
0: ਬੱਚੋਂ ਕੋ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਕਹੀਂ ਪੇ ਕੋਈ ਨੇਟੋ ਮੇ ਹੋ ਯਾ ਕਿਸੇ ਬੇਕਰੀ ਮੇ ਹੋ ਯਾ
1: ਲਾਜ਼ਮੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰੇ,
0: ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਿਸਮ ਕਾ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ, ਆਪਕੇ ਬੱਚੇ ਕੋ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
1: ਬਿਲਕੁਲ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ,
0: ਇਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਫੂਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਦੁਆ ਹੋ ਜਾਏ,
1: ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਰਹਿਮਾਨ, ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖਟੂਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਬਲ ਕਰ, ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਬਣਨ, ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕਮਾਉਣ, ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਪਤਾ ਚੱਲੇ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਾਂ ਪਿਓ ਸਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦੁਨੀਆਂ ਚੱਲੇ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਤਨੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕਿਤਨੀ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਤੇ ਅਗਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾ ਇਕੱਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਤੂੰ ਪਾਉਣਗੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵੀ 4-5 ਟਵਣਗੇ।
0: ਅੱਛਾ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਟਾਈਮ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ
1: ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ,
0: ਇੱਕ ਹੋਰ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹ, ਯਾਨੀ ਕਿ
1: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹ,
0: ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਾਹ,
1: ਬਸ ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਿਓ,
0: ਨਹੀਂ
1: ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤੇ ਪੈਸੇ ਭੇਜੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ
0: ਨੇ, ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸ਼ਾਇਦ ਆਏ,
1: ਬਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਾਚ ਖਾਣਾ ਪਏਗਾ।
0: ਬਾਬਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਲ ਹੀ ਹੋਏਗਾ,
1: ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਰਹੋਗੇ ਤੇ ਐਸ਼ ਕਰੋਗੇ,
0: ਨਾ
1: ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੈਸ਼ ਕਰੋਗੇ,
0: ਨਾ ਇੱਥੇ ਫਾਕੇ ਕਰੋਗੇ,
1: ਚਲੋ ਖੈਰ ਯਾਰ ਫਾਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਓਗੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, 3 ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਗਏ ਹਮਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੇ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਕੇ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਸਟੂਡੀਓ ਮੈਂ ਜਨਾਬ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਮੇਂ ਹਮ ਜੋ ਹੈ ਏਕ ਸੇ ਦੋ ਸ਼ੋ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਕੀਆ ਕਰੇਂਗੇ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮ ਮੁਖਤਲਿਫ ਟੋਪਿਕ, ਅਭੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਜੋ ਕਾਲ ਆਈ ਥੀ ਕਿ ਜੀ ਵੋ ਹਮੇ ਕਿਆ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਉਸਕਾ ਰਨ ਮਰੀਦੀ ਕਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਚਾਹੀਏ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਟੋਪਿਕ ਹੋਂਗੇ ਜਿਸਪੇ ਹਮ ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸੀ ਗਪਸ਼ਪ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰੇਂਗੇ, ਹਮ ਆਪਣੇ ਨਾ ਹਮਾਰੀ ਜੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਬਾਤੀਂ ਹੋਂਗੀ ਨਾ ਉਨਕੋ ਸੀਰੀਅਸ ਲੈਣਾ, ਬਾਕੀ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਵੋ ਉਸਕੋ ਆਪ ਹੱਸਦੇ ਖੇਲਤੇ
1: ਬਾਬੇ ਦੀ ਫੂਕ ਦਾ ਪਤਾ ਕੋਈ ਨੀ, ਨੀਲ ਪੈਣਗੇ ਨੀਲ, ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਲਾ ਤੱਕੇ, ਝਟਕਾ ਪਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਦਾ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ, ਤੱਕਿਓ ਤੱਕਿਓ ਕਿਧਰੇ
0: ਜੀ। ਤੋ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਅਗਲੇ ਇਤਵਾਰ ਤੱਕ ਕੇ ਲਈ ਹਮ ਆਪਸੇ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹੇਂਗੇ। ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਆਖਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਆਪ ਮੈਸੇਜ, ਕੋਈ ਪੈਗਾਮ ਹਮਾਰੇ ਸੁਣਨੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਦੇਖਣੇ ਵਾਲੋਂ ਕੋ ਦੇਣਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ?
1: ਬਸ ਯਹੀ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਰਹੇ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਸੇ ਜੀਏ, ਟੈਨਸ਼ਨੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਓਂ ਕੋ ਦੂਰ ਕਰੇਂ, ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੇਂ ਲੱਗੀ ਰਹਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਔਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸੇ ਰਾਬਤਾ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਸ਼ਵਾਰਮੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤੀ
0: ਜੀ। ਸਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਬਾਬਾ ਫੂਕਾ ਸਾਹਿਬ ਕੋ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਤੋਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਖਿਲਵਾ ਦੂੰਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹੋ ਕਿ ਵੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੇਰੇ ਅਗਲੇ ਸ਼ੋਅ ਮੇਂ ਹੀ ਨਾ ਆਏ, ਤੋ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਖਲੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਕੋ ਯਾਦ ਕਰਤਾ ਰਹੂੰ। ਤੋ ਸਮੀਨ ਨਾਜ਼ਰੀਨ, ਇਹ ਥਾ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਸ ਮੇਂ ਹਮ ਇੱਕ ਨਏ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਾ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਨੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਬਾਬੇ ਫੂਕੇ ਦੀਆਂ ਫੂਕਾਂ, जिसका होस्ट मैं रज़ा मुस्तफ़ा और मेरे साथ स्टूडियो में जनाब डैनिश साहब, बाबा फूका साहब जो हैं वो पीर साहब होंगे, जो हमें अपने मशवरों से, अपनी दुआओं से, अपनी फूकों से जो है वो नवाजते रहेंगे। तो अगले इतवार तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। उम्मीद करते हैं कि आपका आने वाला हफ़्ता जो है वो बहुत ही अच्छा गुजरेगा। अपना ख्याल रखिएगा, अपने गिरदोपेश का, लोगों का ख्याल रखिएगा। खुश रहें और खुश रहने दें। पाकिस्तान जिंदाबाद, डेनमार्क पाइंदाबाद। आप और हम वतन एक संग, नए रंग नई उमंग। हमारा टेलीफोन नंबर है 33 21 29 84, ईमेल रेडियो स्नैपलाई हम